0: खुशी खजाने विद आरजे अर्शिता शिशिला।
1: न्यू केल्टा इदिरा 90.4 FM रेडियो निनादा, इदु जनमनदा नादा तरंगा।